0: Welcome to Adelaide, where cultures meet, where the unique stories within us all have a place and a voice. Welcome.
1: स्वागत है एडलेड में आपका स्वागत है मिलते हैं जहां संस्कृतियां और आपके अनोखे कहानियों को एक आवाज स्वागत है